0: अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो यांगला परमेश्वर जबा अब हिन्बमुला जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला स्वागत मुला गा बियोग तामाङ यांगला परमेश्वर ज्यावा आवा मुसुला एक युहन्ना तीन ला एक अध्याय च्यागो आवश्य याङदा हरङबा किसिम से प्रेम लसुबा मुला कि याङला सन्तान बिसी पुगाबा गदे हिन्बा थेहेन्दे साचिन एन हिन्बा चु पछि दिमुला च्यागो आवश्य याङदा हरङबा किसिमला प्रेम लसुबा मुला परमेश्वर याङ यागर्घी प्रेमिलो आवा मुसुला जब याङ से यसुदा याङला प्रभुला रूपरी स्वीकार लासी मुक्ति याङला याङ परमेश्वर ला सन्तान दोला तेहेन्दे परमेश्वर जेखेन जब आबा जेखेन ताला आहिन्बा परमेश्वर याकर्खी अद्भुत आबा मुसुला भजन संग्रह 84:11 एरङबे मुबा तिग दबिसम परम प्रभु परमेश्वर दिनी देन ढाल मुसुला परम प्रभु से जब देन इज्जत पिन्छु मुला सत्य ग्रामरी ब्रभागा देदा परम प्रभु से हाजी भाई भलो थोक ज्ञान वञ्चित थान्छु आला तिग दबिसम याङला लुइला कठिन सोबारी मलाइबा बोमोर रेबा आमा आबा आहिन्बा परमेश्वर याङला दातेला परिस्थितिला बारेदी सिम्बा देन उदासीन आहिन्बा चुपद ज्ञान परमेश्वर से याङ ज्ञान हाजीबाई भलो थोक ज्ञान वञ्चित अथन्बा प्रतिज्ञा लसु मुला भजन संग्रह 21:2 रङ्से थेला मनोरोध पुरा लसुला थेहेन्दे थेला सुङला बिन्ती रङ्से इन्कार लसुबा आरे परमेश्वरले इच्छा याङसे थेहेन जुबा तिन स्पर्शी प्रार्थनाला जवाब किनबारी हिन्बा भजन संग्रह 20:4 एङबिमुगा परमेश्वरसे रङला मनोरथ पुराण नक्सा दिन रङला बेनन योजना गदे सफल लसुमुला परमेश्वरसे बेनन योजना गदे पुरा लाभरे सेम लसुमुला भजन संग्रह 37:4 परमप्रभुले आनन्दित मुस्युला थेहेन्दे रोसे एला मनोरथ जिन्ना लसुला जब परमेश्वर रङला लुइला इच्छा लुइला नच्छ प्राथमिकता मुसुला जब रङ परमेश्वर द प्रेम लसुमुला थेहेन्दे परमेश्वरला उपस्थितिले आनन्दित मुसुला थेनन तामसे परमेश्वरला रङला प्रार्थनाला जवाब पिन्बा म्राप ठङमुला युहन्ना 15:7 एनी गदी नरी चिजी विषम थेहेन्दे नला ताम एनी गदेरे मुबा विषम एनी गदे दा जे इच्छा नम्बा रिगो थे एनी गदेला लागिरी ता लाला रङ रङला अब परमेश्वर द रङला लागिरी जे एन लाभरी अनुरोध लाभरी हमसुला थेहेन्दे परमेश्वर से रङला अनुरोध पुरा लसुला यागा की शर्त चुमुला की रङ परमेश्वर देन छ्याम्री मुला हाइमा हाइमा रङ द तिगै सिम अलाभरी हाइमा तसै परमेश्वर द थाहा मुला की थे रङला लागिरी जेबा अरे थेरङबा अवस्थारी परमेश्वर से रङला प्रार्थनाला जवाफ अपिनबा छनोत लासुमुला परमेश्वर रङदा माया लबा देन हेर्चा लबा आबा मुस्युला परमेश्वर रङदा थे से गदे जेखिन पिन्सु मुला जुन रङदा साचिन तोला थेन्दे रङला लागिरी सब भन्दा आछ्याङ लाभ तला भजन संग्रह 145:19 परमेश्वरला भई मान्दिब गदे बेनानला मनोरथ परमेश्वर से पुरा लसु मुला परमेश्वर से थेनी गदेला प्रार्थना ज्ञानसु मुला थेहेन्दे थेनी गदेला बजब लसु मुला परमेश्वर ज्ञान घनिष्ठ सम्बन्ध थानबरी नाइसुगो परमेश्वर ज्ञान प्रेम देन सम्मान ला छम हाउ परमेश्वर से रङला प्रार्थना अवश्य जङसु मुला परमेश्वर से रङला रङला दुःखमय फिर्क्याप देला थेहेन्दे रङला लुइरे जेन छुटकारा बला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर ग्याम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 0166194600 रि सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रि बिदा दाजी रङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार अब रङ फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो रंग लमन परिवर्तन लसुगो जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ रंगला सेम परिवर्तन लसुगो नला विश्वासित समक बबरी हसुगो तिगा तिनी रंगला लुइला हाजीबाई ग्लाम मुला जा रंगला छुटकारा तोला तिगा थेरी हाजीबाई विशेष प्रार्थना अनुरोध मुला जो जवाब रंग दाते दोना एम नाइसुगा मुला तिनी ना रंग दिदा रंगला समस्या ज्ञान वास्तविक छुटकारा देन रंगला प्रार्थनाला जवाब याङला लागरी रंगसे लाबरी हम्बा बेनन भन्दा महत्वपूर्ण ताम उन्ला रोमी 12:2 जो संसार धासरे अपराउ तासै रंगला सिमले छार तसि पुरान रूप से परिवर्तन ताउ देन परमेश्वरला जवाब भन योग्य देन सिद्धा इच्छा तिगा हिम्बा थिएनिगा देसी सेबरी हम्ला रंग रूपान्तरित तगाई विवाह परमेश्वरलाई इच्छा हिम्बा तासै रूपान्तरित ताबाला अर्थ तिगा हिम्बा चुरित चमत्कारिक रूपसी रूबरी यागर्की सेग्याम अर्को सेरी परिवर्तन तबा समावेश मुला रूपान्तरणला याकर्की उदाहरण विवाह यागर्की झुसिल किरासे हरङ लसी रङदा जेव पुतली तिर पुतली रि रूपान्तरण तामुला विवाह हिम्बा चु बाइबल पद से रङदा चु रूपान्तरण हरङ लसी याङसेला बिसी पङमुला याङसे लादोला विवाह याङला सेमदा नवीकरण लव हिम्बा देन याङसे याङला सेमदा परमेश्वरला वचन रि ताबा प्रतिगा गदेरे नवीकरण लव हिम्बा याङसे थे प्रतिगा गदे रङदान बारम्बार विदो मुला थेनी गदे ला बारेरी हाइमा दमन सोच लस्युगो हेन्दे एनी गदे दा रङला सुङसे निरन्तर स्वीकार लस्युगो व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसा ज्ञान थलागो यहुसु 1:8 व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसा ज्ञान थलागो तसै थेफेरी यसे दिन छे ध्यान लावरी देन थे ब्रिबा बेनम ताम होसियारी छ्याम पालन लावरी देन एला ग्लामकार देरी यसे उन्नति लाला थेन दे सफलता यङला रङला परिस्थिति ला बारेरी परमेश्वरला प्रतिज्ञाला विचार से रङला सेमद निरन्तर भर लस्युगो चु बारम्बार लस्युगो तिगा ताला विषम रङ अन अन्त चु सत्य विवा विशी विश्वस्त ताला थेन दे थेलिच याकर्गी लानन अद्भुत देन चमत्कारी ताम ताला रूपान्तरण ताला परमेश्वर से रङला लुइरी थे प्रतिज्ञा पुरा लाला जो परिणाम स्वरूप रङला छुटकारा ताला रङला दत्तीला परिस्थिति रि तिगा ताबन मुला विवा बारेरी रङसी रङला सेमद परमेश्वरला दृष्टिकोण देन निरन्तर नवीकरण लाभा साचिन महत्वपूर्ण मुला देन नियमित निरन्तर आधारी थेरङ लासुगो चेक पटक रङला सेम परमेश्वरला प्रतिज्ञा दिन दीक्षी ताबानन रङसी रङला परिस्थिति ज्याभाग्यमरी परिवर्तन ताबा म्राङबरी था निन्दा 2 कुरान्थी 9:8 परमेश्वर से एनी गदेदा आशिष छोन मात्रे पिनबरी हमला ताकि एनी गदे देन हाइमा दमन नोन हरेक ताम छोन तागै तासै जब गेला लागिरी एनी गदेसी छोन मात्रे पिनबरी हमला चु परमेश्वर से लस्युग प्रतिज्ञा हिन्बा चुरी बारम्बार मनन लस्युगो संसार ज्ञान रङला दिमागी पुइबा नकारात्मक ताम गदेदा सट्टा चु विचार द रङला सोचाइरी हाबी तबारिस पिन्सुगो जु चु रङला लुइरी मुक्ति याङबा ज्ञान हिन्बा याङसे सम्भव मुला विवा विश्वास मन्द फिर्क्याप्ला ताम बिरालै याङला विजयला मानसिकता अपना लसुगो बाइबल से रङला बारेरी तिगा बिमुला विवा ताम्रे विश्वास लबा छनोट लसुगो देन रङला लुइ विजय रिपैन ताबा सिगो प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 0166194600 रि सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जय मसीह, नमस्कार।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत, यति बेला साँझको 6 बज्यो।